0: श्वेता सुब्रमण्यम की लिसनिंग टू आवाज
1: एफएम. एक पल लापरवाही.
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: We are always looking for new presenters on Awaz FM Southampton. Email us at info@awazfm.co.uk to find out more.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: You're listening to South Hampshire's biggest multi-language community radio station, Hours FM 99.8, making Southampton great.
4: This is Ross and Arlo. We're loving all the tunes in the car. We've just come back from Southampton Hospital, where they fixed Arlo's arm in the hospital there. And we'd like you to play a tune for everyone else recovering with the great teams there. Keep up the amazing

साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे यह आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर, जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्म में तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: Get your favorite song on the radio. Contact us now.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती है। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: 99.8 Hours FM. Check out our community section on our website, hoursfm.co.uk.

0: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWAS, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: This is Shweta Subram, and keep listening to Awaaz FM. You guys are awesome.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, ये ज़ुल्फ़ें जो रुखसार पे गिरा रखी हैं, किसी की धड़कने यूं ही बढ़ा रखी हैं, सुर्ख रुखसार पे वो तिल तौबा कितनों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं मैकदों में वीरानी सी छा गई है मैकदों में वीरानी सी छा गई है यो आपने महफिल की रौनक सजा रखी है नजरों के प्यालों से छलकते जामिए नजरों के प्यालों से छलकते जामिए हर सू मैं कशों की बाढ़ लगा रखी है हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम हुस्न आपका ये मरमरी बदन जानम मुसव्वरी की आपने हर हद ढा रखी है सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें सितम न कीजिए झुका लीजिए नजरें क्या मुझे मदहोश रखने की कसम खा रखी है शुक्रिया
5: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती ऐसे में उसका एहसास देती है हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम
6: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here, and your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community Radio. We're all about here.
7: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that. An enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel. All of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
8: Radio. The medium that's now large.
9: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@awaazfm.co.uk.
10: एक पल की लापरवाही.
11: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था. पायलट बनना था. मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: How do you say it? A was or a was?

माना कि दौलत में बहुत ताकत होती है, मगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। माना कि तुमने जमीर खरीदे होंगे बहुत, मगर हर ईमान बिकाऊ नहीं होता।

0: I know from the public reaction that we've been greatly missed, Simon.
1: We certainly have, that's for sure.
0: Who else are you going to listen to?
2: Uncle,
3: मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी ओफन डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

हर माँ के लिए उसका बच्चा स्पेशल होता है, और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे। मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहां ला खड़ा किया, अपने स्पेशल से बेटे को कैसा कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी मां बहुत स्पेशल है। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, मगर फिर भी थैंक यू माँ।

0: 24 hours a day, hours FM, online and on air.
1: Uncle, मुझे तो बड़ी होके
2: एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I know from the public reaction that we've been greatly missed, Simon.
1: We certainly have, that's for sure.
0: Who else are you going to listen to?
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: Putter, Ghana, the Sona Chania, Utah Radio Perjuab Dina, Pelassi Le Sagani recipe to the Sona. It was a Bangali, the Sneo, the Sneo. Lassi Le Sagani, the Soja Puri, Glandi, come up and पैसा देखूंगा फिर कड़ी कड़ी बूटी लबनी बात हुआ समझे तो लसी के साथ भाई को उसकी पकाने

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Yang Yingwu of China.
4: Friend of the show.
3: She's one of the 900 that listens. She's big shout out to Yang.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
7: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
8: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
9: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
10: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
11: लाइफ को अटकना नहीं आता, तो फिर हम और आप क्यों रुकें? इस तेजी से दौड़ती जिंदगी का साथ दो, जिंदगी चले बिना रुके।

0: माँ हर समय हर जगह नहीं हो सकती, ऐसे में उसका एहसास देती हैं। हर माँ जैसी माँ को हमारा प्यार भरा सलाम।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Awaz FM is supporting local radio.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
4: Hello, this is Ruxana Simro. I'd like to dedicate this to Awaz Radio Southampton and the whole team. Naam gum jayega, chehra badal jayega, meri awaz hai pehchan. Thank you, Ali.
3: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: is Natalie DeLuccio, and Sunte Rahi Hai Awaaz FM.
1: Ek pal ki laparwahi.
2: अंकल मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: जी ये अब्बास हसन बोल रहे हैं, आप आवाज FM सुनते रहिए।
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज FM के साथ।
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: I'm going to send you the message again and you can't see if you can't do my message.

0: मैडम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव responsibly. फोकस ऑन द रोड।
2: साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर, जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेर व नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी हमारा शेर व नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में दो शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: एक पल की लापरवाही।
1: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM. 24 hours a day, Hours FM, online and on air. On 99.8 FM and online around the world, this is Southampton's Hours FM News.
1: Former DUP leader Geoffrey Donaldson has been given a 15-year jail sentence. It's for a series of historical sexual offences against two women when they were children. Donaldson has always denied the charges. Next, Britain will continue to make the case to the US to continue supporting Ukraine. That's what a minister says, because of strained relations between Kyiv and Washington. This week has been particularly tricky in relations between Ukraine and the US, following Donald Trump's decision to ease sanctions on Russian diesel in the face of rising fuel prices. The UK economy reported surprising growth in August, in a boost to the Chancellor ahead of the autumn budget. The ONS figure did, however, represent a slowdown after stronger activity earlier in the summer. Susanna Streeter, Chief Strategist at the Wealth Club, says it's welcome news for the government.
2: Even if you've got a substantial government debt pile, which we have, it does mean that if you've got growth, that debt is more manageable.
1: An inquest has opened today into the death of the man mauled by a tiger at Yorkshire Wildlife Park. The opening heard his family express concerns about his contact with mental health services leading up to his death. 23-year-old William Chapman died after entering the enclosure in Doncaster on Saturday. The real living wage is going up today. The Living Wage Foundation has announced a 65 pence increase to hourly rates, which is expected to affect 500,000 people. Here's Claire Duncan from the foundation.
3: It feels like the right thing to do, but it also makes business sense. 96% of our employers tell us that it's had benefits, and that can range from everything from reputational benefits, being easier to recruit and retain staff.
1: And the Duchess of Sussex says it's great to be back, as Meghan and the Duke of Sussex were cheered at their first joint engagements on British soil since their return to the UK. Harry and Meghan were welcomed to the community recording studio in St Anne's, Nottingham. That's the latest from Radio News. I'm Tanita Sims.
4: Before you start packing the luggage in your suitcase, Fairgold would like to help you pack more cash into your wallet. And if you request our free selling pack, you could receive extra holiday spending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, and online around the world, 99.8 FM. That was Southampton's Hours FM News. Southampton's community radio, Hours FM.
5: Assalamu alaikum, sat sri akal, aur namaskar. Hum radio awaaz se isliye aapko is waqt haftawar program pesh kar rahe hain. Sher Nagma aur mere badshah bhi mere saath hain. To ye right. To ab mere badshah, main zara aapko ek pyari si nazar Kashmir ke background mein. Ye isme bahut shari shari hai, you know, it's nothing. Nothing, you don't...
6: Okay.
5: Sulagte lamhe is ka unwaan hai. Sulagte lamhe. Ab kis se karein zikre labo kaakul ul ruksar, ahbab sitam dida o harman guzida. Tanha pas zinda kahin raswa sare bazaar. Ye ajnabi raahun ki purasrar khamoshi, nishtar bhi nahi, harfe malamat bhi nahi. یہ اجنبی راہوں کی پرسرار خموشی نشتر بھی نہیں حرف ملامت بھی نہیں ہے حالات کی کیا بات کریں کس سے کہیں ہم خطرے میں نہیں جیان تو سلامت بھی نہیں ہے ہم اجنبی راہوں میں یہی سوچ رہے ہیں اس شہر گلو لالو پہ کیا بیت رہی ہے کیا جانیے کس دست ستمکار نے چھینی اشجار کے اجسام سے گل رنگ کبائیں یہ بکھرے ہوئے رنگ پریدہ گلو لالو صد بارہ بہاروں کے علم پائے خزاں پر اب کوئی صدا آتی نہیں من سے چمن سے خاموش چناروں کے سمٹتے ہوئے سائے افسردہ ستاروں کی سلگتی ہوئی نظریں ایک عمر سے जानिए किस सोच में गुम हैं, वो गीत वो महजूर की महमूद की गजलें। ऐ चांद सरे शाम लबे बाम तो आजा, हम तुझको बताएं दिले दीवाना की बातें, बातें कि जो रातों को सुना करते हैं तारे, पर कोई सदा आती नहीं बन से चमन से। इस शहर गुलो लाला पे क्या बीत रही, इस रंग को तुम रुत का उलट फेर न जानो, यारो मेरे यारो ये खजा बीत रही है।
6: बहुत खूब, बहुत खूब,
7: जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी,
6: क्या आपने एक तस्वीर बना दी है।
5: हाँ, यानी उसमें कोई, यानी सच्ची बात है सारी, इसमें कुछ नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरी अपनी फीलिंग है और इसमें मैंने अपना दर्द, क्योंकि वो मेरा शहर भी है वैसे भी
6: जी।
5: तो उसके बाद मैं आपको, ओए आज तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं है यार,
6: तो मैंने इंट्रोडक्शन ही नहीं किया।
5: नहीं नहीं, मैं एकदम ही जो है ना, मैं कहीं खोया हुआ था
6: जी। जी चले चले दोबारा शुरू करते
5: हैं। नहीं नहीं नहीं, क्यों, नहीं नहीं नहीं, चल रहा, वो मैंने उनको सलाम दुआएं दी हैं
6: जी जी।
5: और आज हम फिर शेर नगमा पेश कर रहे हैं सामीन, आपका अपना, आपकी अपनी आवाज, आपका अपना रेडियो स्टेशन, जैसे कि हम अक्सर कहते रहते हैं, एक ऐसी आवाज जो अपनी सजरी जवानी के साथ आपको प्यार और नए नए प्रोग्रामों के साथ आपके दिल लगी के लिए हर वक्त आपके साथ रहता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको हमारी दोबारा आपको सलाम करता हूं और नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं यही हमेशा यही कहता हूं कि जब इंसान ने इस धरती पे कदम रखा, शेर व शायरी, मौसीकी इंसानी जिंदगी का एक हुस्न है, उसके दुख दर्द में बराबर का शरीक रहा है। जब वो उदास हो नगमों ने उसकी दिलजोई की, और जो फनून लतीफ़ा है उन्होंने उसकी ज़िंदगी में रंग भर दिया। नसर में मैं छोटी छोटी कहानियाँ बहुत लिख चुका हूँ, एक नावल झूठी दुनिया झूठे लोग भी इख्तिताम पसीर हो रहा है। शायरी से सदा की दोस्ती है, उससे जान छुड़ाना मुश्किल है। शायरी मैं सिर्फ अपने मन को ज़िंदा रखने के लिए करता हूँ, मेरे जज्बात एहसास सिर्फ मेरे अपने हैं, जो मैं महसूस करता हूँ वही लिखता हूँ। एक और बहार भी गुजर गई, अपनी बेपनाह यादों को छोड़कर माजी के किसी गार में दफन हो गई। फूलों की खुशबुएं हवा में तहलील हो गईं और दरख्तों ने अपने लिबास, सब्ज़ लिबास उतार दिए। जर्द मौसम ने अपना डेरा डाल दिया और खजां की डाइन ने चीखना शुरू किया। बागों में एक गहरी उदासी छा गई और ऐसा लगता है हर शहर किसी चीज़ की तलाश में है। जर्द पत्ते दरख्तों से गिरकर भागने लगे। फिर मैं सोचता हूँ अब क्या रोना धोना, जो गुजर गया उसे भूल जा, बाहर फिर आएगी। यही जिंदगी है, यही है फसाना। सॉरी, मैं बातों में अपना नाम भी भूल गया, फिर से याद कराता हूँ। मेरा नाम कबूल अहमद सईद है। मेरी कोशिश होती है कि अपने अच्छे अच्छे अशार सुनाऊं और उसके साथ साथ दूसरे बड़े आले मकाम शोरा का भी कलाम आप तक पहुंचाऊं। मेरे साथ मेरे सदाबहार बादशाह आसिफ अली साहब भी अपने दरबार में अपने तख्त पर मौजूद हैं, मेरी रहनुमा भी हैं, मेरे नगमागर भी हैं। वह अपने नगमागरी से आपको बहुत ही उम्दा नगमे सुनाते हैं। अब उनको अदाब कहता हूँ, उनसे पूछता हूँ को, मेरे बादशाह ज़िले लाई, मेरे बादशाह आप कैसे हैं, सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज आपकी कुछ बड़ी गहरी सोच में हैं आप आज, अल्लाह खैर करे। कुछ पूछ सकता हूँ कि आज आपके चेहरे पे गज़बनाकी क्यों है, कह सकता हूँ, आई डोंट नो। बहरहाल जवाब ठीक होगा, मुझे पता है आपकी दानिशवरी, आपका जो है जो भी आपके ख्याल बड़े बुलंद हैं, तो मैं आपसे रोज़ इसलिए ऐसी बातें करता हूँ ताकि आप मुझे समझाएं और सही रास्ते पर लाएं। कैसे हैं आप? क्या करूँ, आपको हंसाना भी तो है ना।
6: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। अपने सामीन को सलाम अर्ज करता हूँ, नमस्कार, सत श्री अकाल और खुश आमदीद शेर नगमा प्रोग्राम में। और खोया खोया कहाँ से हूँ मैं आज? नहीं,
5: मेरी अपनी फीलिंग भी हो सकती है ना, वैसे भी खजां का मौसम है ना, तो हर चीज खोई खोई लगती है।
6: एक्साइटेड हूँ,
5: हाँ,
6: इस बात, ये बात, ये तो मैं कह सकता हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा नोट करते हैं।
5: नहीं, नहीं, क्या करूं मैं, मैं आपको जो इतनी सदियों से जानता हूँ. हाँ जी, तो जी. अब मैं आपको, मैंने वो भी सुना दिया, ये भी सुना दिया, अब क्या मैं आपको नगमा सुनाएंगे या मैं एक प्यारी सी नज़्म सुनाऊं?
6: जी जी सुनाए. बहुत तो प्यारी. उसके
5: मोहब्बत के तस्वर को अगर तस्वीर करना है, यानी उसको तस्वीर की तरह सजाना है, तो आपने करना क्या है, समझिए आपको, मोहब्बत के तस्वर ख्याल को अगर तस्वीर करना है तो आपने करना क्या है. मोहब्बत के तस्वर को अगर तस्वीर करना है, धनक से, धनक बोलते पता है ना, धनक किसको बोलते हैं, कोसे कजा जो रेनबो होती है,
6: ओके ठीक,
5: इसको उर्दू में धनक भी कहते हैं.
6: ठीक.
5: मोहब्बत के तस्वर को अगर तस्वीर करना है, धनक से रंग लेना, सितारों से धमक लेना, शहर से रोशनी लेना, गुलों से दिलकशी लेना, मगरनी बुलबुलों से नगमगी लेना, अलस सुबह जाग जाना, औस के कतरों से तुम अपनी पाकिजगी और ताजगी लेना, सबाहत सबाहत हूर से लेना, मलाहा तुम मेरे महबूब से लेना. और उसके बाद मोहब्बत के अगर तस्वर को तस्वीर करना है, हजारों बेद वाले बड़े आज़म के तखैर खेज खत्ते में चले जाना, बहुत मखसूस जंगलों में कलांचे मारते आहू का रम तस्खीर करना, और उसके नाफे मौजन से सिफत से खुशबू खुशबुए जादू असर लेना. मोहब्बत के तस्वर तस्वर को अगर तस्वीर करना है, लगे जब जंगलों में आग उस आतश के शोलों से गज़ब की तुम लपक लेना, समंदर के तहमुल से जब्त और गहराई लेना, बहारों से ये कहना अपनी शादाबी तुम्हें दें, बहारों से कहना ये अपनी शादाबी तुम्हें दे दें. मोहब्बत के तस्वर को अगर तस्वीर करना है, किसी सरसब्ज वादी में चमकती झील पर जब काले बादल झूम कर छा जाएं, हवा रुक जाए, बारिश की बहुत नन्ही सी बूंद नन्ही बारिश की बहुत नन्ही सी बेहद दिलनशीन शहजादियाँ बूंदों की नाजुक पालकी में जब उतर आएं, तो ये मंजर चुला लेना है, ये सारे रंग और सारे मंजर तुम्हारे हाथ आ जाएं, मगर फिर भी अधूरी सी तुम्हें तस्वीर लगती हो, तरफ जारे तमन्ना में अलमनाकी अलमनाकी ज़रूरी हो मोहब्बत की, अगर ये मोनालिसा बन जाए बन मोनालिसा बन नहीं पाए, तो फिर एक काम तुम करना, मेरे टूटे हुए दिल की हरी करची किरची उठा लेना, यही जौहर तो इस तस्वीर में एक रूप पहुँकेगा. मोहब्बत के तस्वीर को अगर मोहब्बत के तस्वर को अगर तस्वीर करना है,
6: वाह,
5: ऐसे नहीं तो मोहब्बत की तस्वीर जिंदा रहती है, उसमें देखें क्या क्या चीज़ शामिल करनी है आपने.
6: ये तो तस्वीर बनाना बहुत मुश्किल है.
5: नहीं, लोग कर लेते हैं, ये तो कुछ भी नहीं.
6: आपने कभी बनाई है?
5: नहीं, मैं उसके लिए बहुत कुछ चाहिए प्यारे.
6: या फिर आपको इस तरह पूछना चाहिए कि कितनी बनाई है?
5: वो तो आप पूछेंगे तो उसका जवाब मेरा ये होगा, क्या कह सकते
6: क्या कह सकते.
5: चले फिर,
6: चले एक प्यारा सा नगमा.
5: हाँ जी,
6: नगमा हो जाए.
5: हाँ बिल्कुल.
6: तो मोहब्बत के बारे में, कि ये मोहब्बत होती क्या है
5: और क्या बला है, और ये इसको कैसे आप फतह कर लें, और कैसे आप इसको,
6: कुछ तो इसका जवाब होगा ना.
5: जरूर होगा.
6: हाँ चले सुनते हैं.
5: सुनते हैं.

0: लीजिए सर, मोहब्बत है क्या चीज़, आप ये तो समझ गए होंगे आप।
1: बिल्कुल, मैं तो रोज उसको समझने की कोशिश भी करता हूँ और कभी कभी खो भी जाता हूँ।
0: हाँ, तो हमें कभी बताया नहीं आपने,
1: ये अभी करण साहब से पूछते हैं, उनको ज्यादा पता होगा। करण साहब ने हमें याद किया है,
0: जी, बहुत शुक्रिया है। हमें याद किया, आपको सलाम पेश कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले लाइन पे था,
1: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद।
1: चलो ठीक है, शुक्रिया अदा करता हूँ। करण साहब को बड़ी देर से जानता हूँ,
0: जी जी,
1: बड़े लाजवाब आदमी है और बड़े टैलेंटेड आदमी।
0: ऑफकोर्स ऑफकोर्स, हाँ
1: जी, तो फिर बात करेंगे।
0: उसका एक जुमला जो है
1: वो क्या
0: है, वो मैंने
1: नोट किया है
0: और शायद हमारी जो आवाज की कामयाबी है,
1: अच्छा,
0: शायद मतलब बहुत सी दुआओं के साथ, लेकिन शायद ये जुमला जो उसने बोला
1: बहुत ज्यादा पावरफुल,
0: ये भी जुमला जो है ना,
1: बहुत
0: उसमें हिस्सा है,
1: उसमें हिस्सा है। क्या है वो?
0: तो मौका नहीं छोड़ना।
1: हाँ, वाह वाह, क्या बात,
0: मौका नहीं छोड़ना, ये करम भाई का है।
1: बिल्कुल,
0: करम भाई, वी लव यू फॉर दैट।
1: ये तो एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा है एक जिंदगी के लिए।

0: आपने मौका गुरा दिया, मौका अपना जो आपका चांस खो दिया, यू लॉस्ट इट, टाइम नेवर कम्स बैक,
1: इट नेवर कम्स बैक, एक दफा गया तो गया,
0: बिल्कुल सही
1: जी। तो जी इशाद,
0: और उसके बाद मैं आपको क्या क्या सुनाऊं?
1: आप ये सुनाए कि आपकी एक मोहब्बत की कहानी सुना दें।
0: मोहब्बत की कहानियां तो सब इसमें है ना, ये मोहब्बत के बगैर तो कोई चीज कायम नहीं ना। आप देखें सूरज, उस जो सूरज सितारे सब जो हैं, अगर उसमें उनमें आपस में कशिश ना हो, कशिश शक्ल बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक पुल अगर बैलेंस में ना हो, सब चूर हो जाएगा।
1: तो चांद को सूरज के साथ मोहब्बत है?
0: बिल्कुल है,
1: लेकिन वो चांद मिलते तो है
0: आप
1: नहीं।
0: पहले ये तो सोचें, चांद की जितनी रोशनी है वो सूरज से मिलती है उसको,
1: उसके
0: अपनी कोई नहीं।
1: क्या बात
0: नहीं,
1: है, क्या बात है,
0: नहीं ट्रू है,
1: एब्सोल्युटली साइंटिफिक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है
0: वो।
1: लेकिन कभी मिलते नहीं है, कभी मिलते नहीं है,
0: कौन नहीं मिलते,
1: चांद और सूरज,
0: यही तो राज है, यही तो राज है। अगर वो मिले तो फिर कुछ भी नहीं है।
1: तो फिर मोहब्बत कैसी हुई?
0: मोहब्बत तो जिंदा रहती है ना, अब रोज निकलते हैं फिर आ जाते हैं, फिर ये मोहब्बत कायम रखने वाली है कि बाद एक दफा वो मिल जाए तो बात खत्म, ये तो नहीं, ये मोहब्बत एवर लास्ट।
1: देखिए ना बेचारा चांद, चांदनी,
0: ये तो आप चांद से पूछे ना,
1: चांदनी जो है वो सदियों से वो घूम रही है वो सूरज को ढूंढ रही है, कभी मिलते नहीं है।
0: कभी मोहब्बतें जो है ना वो नहीं भी पूरी होती, और ये निजाम कुदरत है, चलता रहता है, और ये जिसकी किस्मत में मिलना हो मिल जाता है, नहीं मिलना हो तो वो भी नहीं होता।
1: ये मोहब्बत पर ही तंग करती है,
0: बहुत तबाह कर देती है आदमी को। क्या बात कर रहे हैं,
1: मैं नहीं करता।
0: हाँ
1: नहीं, मैं नहीं करता।
0: आप करते हैं लेकिन आप उसमें खो नहीं जाते हैं ना। बड़े होशियार आदमी। हम तो मर जाते हैं सही, इसलिए हम तबाह कौन सूरत में जो है जीते हैं, ठीक नहीं।
1: मैंने एक पीस में रहने,
0: वही तो है मुझे, मैं यही तो सीखने आया हूँ दरबार में, ऐसे तो भी दरबार में आता आस्ता आस्ता सीख रहा हूँ आपसे।
1: ठीक है जी।
0: नज्म है, मोहब्बत, मोहब्बत की बातें कर रहे हैं तो मोहब्बत पे ही ठीक है चल जाए। मोहब्बत खुश गुमा है,
1: अच्छा
0: तुम्हारी अंगिश्तरी के नग में जी मेरी मोहब्बत चमक रही है। अगर कभी ये गुमा भी गुजरे कि मैं तुम्हें भूलने लगा हूँ तो इस नगीने को जो अंगूठी में होती है, मैं तुम्हें भूलने लगा हूँ तो इस नगीने को देख लाना। मेरी निगाहों की जगमगाहट तुम्हारी आंखों से ये कहेगी, सुनाओ मोहब्बत, सुनो मोहब्बत तो खुश गुमा है। अगर कोई बुग्ज, अगर कोई बुग्ज दिल का मारा, नजर से टूटा हुआ सितारा, तुम्हारे सीने में वसवसों के लिए खंजर उतारता हो, कि वो जो दिल फेंक बेवफा है, कि वो सब पर फरीफता है। आप तो सब पे, वो आपका ये आप पे फिट आता है, वो सब पे फरीफता है, यानी वो मरता है जो सब पे फरीफता, नहीं कुर्बान होना,
1: तो मैं सब पे मरता हूँ,
0: मुझ मेरा ख्याल है। इसलिए आप इतने खुश शक्ल हैं और इतने जानदार हैं, आपको किसी फिक्र ही नहीं। हम तो मर जाते हैं ना शायर लोग, हम खो जाते हैं, आप नहीं।
1: चलिए इसके ऊपर नो कमेंट, क्या कहते,
0: सुना है दिल जो है ना वो ऑनेस्ट है, और दिमाग जो है बदमाश है आदमी का।
1: अच्छा
0: हाँ, तो
1: चले मेरे ख्याल में कि करण भाई से पूछते हैं।
0: हाँ हाँ, करण भाई ज्यादा जानते हैं, वो मिलेंगे तो बात करेंगे।
1: अभी मेरा ख्याल आ गया है लाइन पर,
0: चलो ठीक है उनसे कहिए।
1: करण भाई गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून आवाज।
0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून करण साहब, और बड़ी खुशी हुई आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और हमने बहुत सारे सवाल आपके लिए तैयार किए हैं, तो वो अपने मेरे बादशाह आपसे पूछेंगे, तो जरा हमें भी सिखाइए, जीना सिखाइए, क्या क्या क्या, हाँ जी, जिंदगी के क्या फसाने हैं और क्या राज हैं, जरा हमें भी टीच करें ना प्लीज करण साहब।
2: देखो प्रणाम सबको सुनने वालों को, और मेरे साथ जो बने हुए हैं, अब जो बाद में बड़ी तरह मौका मिला आपकी आवाज सुन के,
0: हाँ
2: आपसे गुफ्तगू करने का।
0: हाँ जी, नहीं नहीं, जैसे प्लेजर, मैं तो आपको कितनी देर से जानता हूँ, आप तो बड़ी देर से मिले हैं।
2: ज्यादा नहीं कुछ कह सकता, थोड़े से कुछ लफ्जों में कुछ सुनाना चाहूंगा।
0: जी जी
1: जी जी,
2: लिखी नहीं है मेरी, लिखी नहीं है, ये लिखी है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की।
0: जी जी
2: जी, वो महान कवि है, वो अपने सदी के, उन्होंने जैसा कहा है
0: जी जी,
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती।
0: वाह वाह,
2: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती
0: जी जी,
2: कोशिश करने वालों की कभी اظہار نہیں ہو
0: سکتا. بڑی بات کی ہے, بہت بڑی بات کی ہے. پورا فلسفہ آپ نے دو سطروں میں بیان کی ہے, بالکل صحیح ہے.
2: آگے لکھ رہے ہو
0: جی,
2: ننھی چیتی جب دانا لے کر چڑھتی ہے
0: جی,
2: چڑھتی دیواروں پر سوبار پھسلتی ہے, من کا وشواس رگوں میں ساہس بھرتا ہے, چڑھ کر گرنا گر کر چڑھنا نہ اکھرتا ہے.
1: بہت
2: آخر اس کی محنت بیکار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی.
0: بالکل, ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, صحیح فرمایا, اور ہمیں بھی اس آپ کی باتوں سے بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں, اور بڑی باتیں آپ نے کہی.
2: آگے لکھا گیا ہے, آگے وہ بتاتے ہیں, ڈبکیاں ڈبکیاں سندھو میں گوتہ خور لگاتا ہے
0: جی,
2: جا جا کر خالی ہاتھ لوٹ کر آتا ہے
0: جی,
2: ملتے نہیں سہج موتی گہرے پانی میں, ملتے نہیں سہج موتی گہرے پانی
0: میں,
2: بڑھتا ڈگنا بڑھتا ڈگنا اس کا حیرانی میں, موٹھی اس کی خالی ہر بار نہیں ہوتی.
0: واہ, وہ اس کی کوشش ہے نا بار بار. ہاں جی,
2: کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار
1: نہیں ہوتی, ہار نہیں ہوتی,
0: کیونکہ وہ مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں, دل ہارتے نہیں نا وہ.
1: بے شک,
0: بالکل صحیح کہا,
2: بہت بڑھیا, بہت بڑھیا فرمایا گیا ہے. تو اس کو انہوں نے بولا کہ جس طرح تو بتایا کہ یہ ایک انہوں نے سیناریو دکھایا ہے کہ کیسے آپ کو محنت کرنی ہے, پر اس کو انہوں نے علاج بھی بتایا لکھنے والے نے
0: جی,
2: کہ وہ کیسے آپ اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں
0: جی جی.
2: اسفلتا ایک چنوتی ہے
0: جی,
2: اسفلتا ایک چنوتی ہے, کرو کیا کمی رہ گئی دیکھو اور سدھار کرو
0: جی.
2: جب تک نہ سفل ہو نیند چین تیاگو تم, جب تک سفل نہ ہو نیند چین تیاگو تم
0: جی,
2: سنگھرش ایک میدان چھوڑ کر مت بھاگو تم, تم کیے بنا اور کچھ کیے بنا جے جے کار نہیں ہوتی, کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار
0: نہیں ہوتی.
1: I like that, میدان نہ کبھی چھوڑنا,
0: میدان نہ چھوڑنا اور کبھی کوشش نہ بھاگنا.
1: ویری گڈ, ویری گڈ, زبردست.
2: آج 10 سال سے تھوڑا بہت بوند بوند کر کے ایک ساگر کو پہلا ساگر تیار کیا ہے, 1 سال کا آواز اسمبلی
0: انداز میں اس کو سم اپ کیا ہے, بہت بڑھیا.
1: مبارک تو کرم بھائی آپ کو بھی ہے, تو بیکوز کہ آپ تو شروع سے آواز کے ساتھ ہیں, اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم فرسٹ ٹائم آواز کو مطلب چھوٹے سے کمرے سے, چھوٹے سے روم سے ہم نے شروع کیا تھا, تو آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ وہاں تھے.
2: تو
1: بالکل ہے, بالکل ہے, وہ تو جسٹ مصروفیات کی وجہ سے آپ یہاں نہیں آ سکتے, لیکن پھر بھی آپ کبھی کبھار جیسے آپ کو موقع ملتا ہے تو آ جاتے ہیں, جیسے کہ آ جائے ہیں. تو اٹس اے گریٹ پلیجر, اٹس اے گریٹ پلیجر, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے اسٹرانگ سپورٹر.
0: ہاں, تھینک یو ویری مچ کرن صاحب, اور آپ کی آواز سن کے اور آپ کی باتوں کو سن کے میں بہت خوش ہوا ہوں, اور بڑی جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اٹس اے گریٹ پلیجر. بالکل,
2: اور کوئی کوشچن آپ کے پاس, آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے کچھ سنبھال کے رکھے ہمارے لیے,
0: کون سے نہیں آپ کو بتا دیا نا.
1: بس یہی ایک کوشچن تھا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے, محبت کا کچھ ڈسکرپشن دے دیں.
2: محبت وہ ہوتی ہے جہاں پر دو دل مل جائے, چاہے دوستی ہو یا ماں باپ کا پیار ہو یا بھگوان سے لو.
1: واہ, یہ تو بڑا سمپل سوال ہے,
0: بڑی جلدی انہوں نے حل کیا,
1: زبردست. تھینک یو کرم بھائی, تھینک یو فور یور کال,
0: آل دا بیسٹ ٹو یو, اور بہت بہت شکریہ.
1: تھینک یو,
0: بہت بہت آپ نے رونق لگا دی ہمارے پروگرام.
1: کیا بات ہے کرم بھائی, کرم بھائی کی اپنی
0: رونق. ملاقات ہوگی تو پھر اور بھی ہمیں مزہ آئے.
1: بالکل بالکل جی, بالکل.
0: اوکے جی, بائے بائے
1: جی. تو کیا بات ہے کرم بھائی کی,
0: بڑا زبردست انٹیلیجنٹ آدمی ہے, میں ملا ہوں میرا.
1: تو جی سر, تھینک یو سو مچ کرم بھائی ون سیکنڈ. تو پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں جی.
0: محبت خوشگواں ہے یہ, میں آدھے رستے میں پھر وہ آ گئے تھے
1: جی,
0: تو ان کی باتیں سن کے بھی اور بھی مزہ آ گیا
1: جی جی.
0: محبت خوشگواں ہے تمہاری انگشتری, یعنی انگوٹھی میں, تمہاری انگشتری کے نگ میں میری محبت چمک رہی ہے, اگر کبھی یہ گمان بھی گزرے کہ میں تمہیں بھولنے لگا ہوں تو اس نگینے کو دیکھ لینا. میری نگاہوں کی جگمہاہٹ, میری نگاہوں کی جگمگاہٹ تمہاری آنکھوں سے یہ کہے گی, سنو محبت تو خوشگواں ہے. अगर कोई बोझ दिल का मारा नजर से टूटा हुआ सितारा तुम्हारे सीने में रस वसवसों के खंजर उतारता हो कि वो जो दिल फेंकने वाला वो बेवफा है, वो जो सब पर फरिश्ता है, फरिश्ता कुर्बान है
1: जी।
0: वो उसमें आसिफ अली साहब भी शामिल है।
1: हेलो जी
0: आपको हंसाता हूँ, आई डोंट मीन से। वो जो दिल फेंक वो बेवफा है कि वो जो सब पर फरिश्ता है कि वो सब पर पर परदेश जा बसा है कि वो जो परदेश जा बसा है तुम्हें भंवर बीच छोड़ देगा, वफा के सब कॉल कॉल तोड़ देगा। वो नहीं तोड़ेगा, मेरा बादशाह नहीं तोड़ेगा,
1: नहीं तोड़ेगा, नहीं, नहीं।
0: तो उससे पहले कि रो पड़ो तुम इससे पहले कि जल बुझो तुम इससे पहले कि ये कहो तुम कि वो अहदो पमान सब गलत थे, वफा के अनुमान सब गलत थे, शहर के इमकान सब गलत थे। तुम अपनी अंगिश्त दिल रुबा पर गुलाब चेहरे झुका के कहना सुनो वो सचमुच ही बेवफा है, तुम्हारा रोना सवाल बनकर ये शोख शोख नग मुस्कुराहट पड़ेगा, मोहब्बतों का सफीर बनके ये सुर्ख नग और हसीन गीठी मेरी नुमाइंदगी करेंगे, तुम्हारे चेहरे से छेड़ करते तुम्हारी आंखों के रंग पड़ते, तुम्हारे बालों पर हाथ रख के तुम्हारे गालों को थपथपा के हसीन गिश्तरी के गिश्तरी कहेगी सुनो मोहब्बत तो खुशगुमा है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो मोहब्बत की बातें हमने आज बहुत की हैं ना, आपने गाने भी नहीं सुनाए, क्या मुसीबत है आज?
1: चले
0: फोन नंबर भी नहीं दिया, ये क्या मुसीबत है? दो मुसीबतें।
1: चले
0: चलो ठीक है,
1: अपने सामी को बता देता हूँ फोन नंबर 02381980072 02381980072। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं। अपना रानी रोज जो है उन्होंने आपको मैसेज भेजा है।
0: अच्छा जी।
1: और उन्होंने भी एक छोटा सा दो लाइंस आपके लिए लिखे।
0: जरूर जरूर जी।
1: तो
0: इट बी अ प्लेजर।
1: हाँ तो वो कहती है कि हकीकत की राहों में सपने टूट जाते हैं,
0: हकीकत की राहों में सपने टूट जाते हैं,
1: मौसम जो बदले तो फूल भी सूख जाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: कभी हमें भी याद कर लिया करो
0: फिर तो रोज करते हैं। व्हाट डू यू मीन?
1: कहते कभी हमें भी याद कर लिया करो फिर मत कहना कि दोस्त क्यों रूठ जाते हैं।
0: नहीं मैं उनको जवाब देता हूँ, लाइन पे है।
1: नहीं, वो
0: अच्छा
1: मैसेज
0: उनको कहीं है कि ये कि मोहब्बत जो सच्ची हो वो कभी मरती नहीं है,
1: बेशक
0: वो दिल में एक खुशबू की तरह जिंदा रहती है और एक ताजा फूल बहार के पहले फूल की खुशबू की तरह हमेशा जिंदा रहती है। हम आपको हमेशा याद करते हैं
1: जी।
0: और आपकी मोहब्बत का कि हम हमेशा अपने दिल में रखे हुए आपको याद करते
1: हैं।
0: ठीक है
1: जी। तो
0: अगर आपने नगमा फिर भी नहीं, आपने फिर नहीं सुना है, क्या मुसीबत है यार।
1: चले अभी नगमा सुनाता
0: हूं। इंतजार कर रहा था।
1: चले आपको नगमा सुनाता हूँ, आप आवाज पहचाने।
0: ठीक है, कोशिश तो करता रहता हूँ।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: वेलकम बैक शामिन, आपने खूबसूरत सी गजल सुनी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरे सामने इंतखाब है फिराक गोरखपुरी का।
1: जी,
0: फिराक गोरखपुरी ये अपने आप में एक बहुत मशहूर शायर हुए हैं, तो उनकी गजल
1: जी
0: पेशे खिदमत आपके लिए।
1: जी शायर,
0: इश्क के हाथों दिलो जान शाद है आबाद है, रह गई तेरी जफाएं वो भी कुछ कुछ याद है।
1: बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। इश्क के हाथों दिलो जान शाद है आबाद है, रह गई तेरी जफाएं वो भी कुछ कुछ याद है।
1: वाह।
0: इश्क वालों को ना पूछो शाद है आबाद है, सौ तरह आबाद होकर सौ तरह बर्बाद है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: इश्क वालों की ना पूछो शाद है आबाद है, सौ तरह आबाद होकर सौ तरह बर्बाद है।
1: बर्बाद है बेशक,
0: बस उन्हीं के फैज से वीरानियां आबाद हैं, बस उन्हीं के फैज से वीरानियां आबाद हैं, हर अदाएं हुस्न में सौ आलमे इजाद है।
1: वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। जिंदगी पर एक तोहमत है ये नज़्मे जिंदगी, जिंदगी पर एक तोहमत है ये नज़्मे जिंदगी, इश्क पर जिस तरह सब इल्ज़ाम बेबुनियाद है।
1: वाह।
0: आज तक खूने तमन्ना से बसी हैं जन्नतें, आज तक खूने तमन्ना से बसी है जन्नतें, तेरे उठते दर्द से सीने अभी आबाद हैं।
1: बहुत खूब,
0: शुक्रिया जी। ये झुकी नजरें तेरी ये जेरे लब बातें तेरी, ये झुकी नजरें तेरी ये जेरे लब बातें तेरी, दास्ता दर दास्ता रुदाद दर रुदाद है। इश्क के हाथों दिलो जा शाद है आबाद है, रह गई जफाएं वो भी कुछ कुछ याद है। और इसके साथ ही मेरे सामने इंतखाब है और फैज़ अहमद फैज का,
1: आई लव फैज अहमद फैज, बहुत
0: उम्दा लिखते हैं
1: जी
0: फैज अहमद फैज। तो पेशे खिदमत में उनकी एक गजल
1: जी शायद।
0: तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है शहर बार बार गुजरी है।
1: वाह वाह,
0: शुक्रिया जी। जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जुनून में जितनी भी गुजरी, शुक्रिया जी, जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जुनू में जितनी

0: आज करना था वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है।
1: जी वाह जी वाह, बात को
0: ना गुल खिले है ना उनसे मिले ना मैं पी है, ना गुल खिले है ना उनसे मिले है ना मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है।
1: वाह वाह बहुत खूब।
0: ना गुल खिले है ना उनसे मिले है ना मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। और मक्ता शेर है जी, चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी, चमन पे गारते गुलची से जाने क्या गुजरी, कफस से आज सबा बेकार बेकरार गुजरी है। तुम ना आए हो ना शब इंतजार गुजरी है, तलाश में है शहर बार बार गुजरी है। तो ये थे, शुक्रिया, ये फैज अहमद फैज का कलाम था। तो अली भाई, ये जो शायरी होती है, ये उर्दू शायरी, एक अल्फाज उनको तरदीब में पिरोना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती,
1: नहीं होती।
0: ये
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ, ये कुछ जो लोग शायराना अंदाज रखते हैं जी, वो उनके लिए ये एक ऊपर से परवरदिगार से ये एक समझो ब्लेसिंग होती है ये
1: जी,
0: कि वो इसमें ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे ये उर्दू में बहुत से शायर हुए हैं, उनको कोई हर एक के अपने अपने ख्यालात होते हैं। कोई गम की शायरी लिखता है,
1: बिल्कुल,
0: कोई आशिकाना शायरी जैसे लिखता
1: जैसे है। उस वक्त दिल में महसूस होते हैं।
0: जी जी हाँ
1: जी जी बिल्कुल।
0: जो लव फेलियर होते हैं, वो जो इश्क में नाकाम हुए होते हैं, वो उस तरह की शायरी लिखते हैं
1: जी।
0: कुछ माँ की शायरी लिखते हैं
1: जी,
0: माँ के लिए जो उनका बाप बेटे माँ बाप माँ मा और बेटे का प्यार होता है
1: जी।
0: वो उसमें मुझे सबसे जो ज़्यादा पसंद है वो मुनव्वर राणा का है
1: जी।
0: वो मुनव्वर राणा का एक शेर है कि किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई।
1: वाह।
0: किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।
1: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
0: जी हाँ
1: हाँ, माँ माई होती
0: है। हाँ, जो माँ की जो माँ के लिए जो शायरी होती है, हमने गुजरे हफ्ते ये जो
1: शुरुआत की थी,
0: हाँ, माँ के प्यार के ये जो वो उस पर शुरुआत की थी
1: जी,
0: कि माँ के प्यार को लफ्ज़ों में लिमिट लफ्ज़ों में सीमित नहीं किया जाता।
1: बिल्कुल सही बात।
0: वो बेपनाह है वो।
1: बिल्कुल सही बात।
0: उसके लिए दुनिया के हर जबान के जो लफ्ज हैं वो छोटे पड़ जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: अधूरे हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है
0: जी। हाँ, तो
1: अपने सामने से हम दावत देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अगर आपने प्रोग्राम में शामिल होना, प्रोग्राम में हिस्सा लेना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 07786914400। तो लाइंस, दोनों लाइंस खुले हैं इस वक्त। स्टूडियो का फ़ोन नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, रिकॉर्डेड मैसेज भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं 07786914400। जी जी सर।
0: और मैं और इसमें एक जोड़ता हूँ कि ये प्रोग्राम आप FM 99.8 पर और DAB रेडियो इंटरनेशनली सुन सकते हैं
1: जी। जी,
0: ये मैं इस प्रोग्राम में आपका होस्ट हूँ जेरी, और मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन के डायरेक्टर अली बेग साहब
1: जी,
0: जो इस प्रोग्राम में मेरे हेड मास्टर भी है,
1: ले लीजिए।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मास्टर्स का

0: मैं देखता हूँ ना कि आठ दफा आप जब आते हैं तो मैं देखता हूँ कि भाई आपका जो होमवर्क है हाँ। वो पूरा किया कि नहीं किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ
0: जी
1: हाँ। तो ये अली भाई एक होता है कि जो एक प्यार होता है, एक फैमिली में प्यार होता है, मोहब्बत होती है जो
0: जी
1: को एक माँ और बेटे की मोहब्बत, माँ या बेटी की मोहब्बत, बाप या बेटे की बाप या बेटी की मोहब्बत
0: जी
1: या भाई बहन की मोहब्बत
0: जी,
1: यह सब का अलग अलग एक रसूख होता है
0: जी,
1: एक अलग अलग का अंदाज होता है।
0: बेशक बेशक।
1: तो एक बार किसी शख्स ने पूछा
0: जी
1: कि जैसे कह लीजिए कि मैंने माँ से पूछा
0: जी
1: कि कौन किसका इंतजार करता है, माँ ने कहा जब बेटियां छोटी होती हैं
0: जी
1: तो इंतजार करती हैं कि बाबा कब आएंगे, हमारा बाप हमारे पापा कब आएंगे
0: कब आएंगे,
1: और जब बेटियां रुखसत हो जाती हैं
0: जी
1: तो उनके बाबा जो होते हैं वो इंतजार करते हैं
0: बेशक बेशक
1: कि बेटियां कब आएंगी।
0: ये
1: वक्त का पहिया जो वो घूम जाता है।
0: बिल्कुल सही है।
1: जब बेटियां छोटी होती हैं तो वो इंतजार करती हैं कि हमारे बाबा कब आएंगे
0: जी,
1: और जब बेटियां बड़ी हो के रुखसत हो जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं, ब्याही जाती हैं
0: जी,
1: तो फिर उनके बाबा जो है वो इंतजार करते हैं
0: बेशक बिल्कुल
1: कि हमारी बेटियां कब आएंगी
0: जी।
1: और दुनिया में वाहिद जो रिश्ता बाप और बेटी का होता है
0: जी,
1: जो कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि बेटी बाप को कभी नाराज नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल।
1: बेटी बाप को कभी नाराज नहीं
0: नहीं कर सकती,
1: नहीं कर सकती और ना ही उसको नाराज देख सकती है
0: जी।
1: और बाप जो होता है वो बेटी को कभी नाराज होने नहीं देता,
0: होने नहीं देता बेशक बेशक, देख भी नहीं सकता
1: जी। हाँ
0: जी।
1: तो इसी सब्जेक्ट पे, इसी ख्यालात पे मैंने एक नज़म लिखने की कोशिश करी है अपने अपने आवाज़ रेडियो सुनने वाले सामीन के लिए। उसको मैंने उन्वान दिया है ब्याही हुई बेटी का इंतज़ार।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: एक एक बाप की नज़र से
0: जी इशारा
1: कुछ इस तरह। शुक्रिया जी। आंगन में अब पहले जैसी रौनक नहीं होती, आंगन में अब पहले जैसी
0: रौनक
1: नहीं होती, तेरे बिना बेटी कोई सुबह मुकम्मल नहीं होती।
0: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
1: आंगन में अब पहले जैसी रौनक नहीं होती, तेरे बिना बेटी कोई सुबह मुकम्मल नहीं होती।
0: नहीं होती, बहुत खूब।
1: जिस घर में तेरी हंसी के फूल खिलते थे, कहकहों से हर शू लम्हे धुलते थे, वक्त थम सा गया है आवाजें खामोश है। वक्त थम सा गया है आवाजें खामोश है, तेरी किलकारियों के लिए बेचैन मेरी आगोश है।
0: बहुत खूब
1: शुक्रिया जी। तेरे कमरे का दरवाजा आज भी खुला रखता हूँ, तेरे कमरे का दरवाजा आज भी खुला रखता हूँ, तेरी बचपन की तस्वीर से बातें करता हूँ।
0: वाह वाह, बहुत खूब।
1: तेरी गुड़िया, तेरी किताबें, तेरी छोटी सी चुनरी, इन सब में आज भी तेरी खुशबू ढूंढता हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: शुक्रिया जी।
0: बहुत खूब।
1: तेरी गुड़िया, तेरी किताबें, तेरी छोटी सी चुनरी, इनमें आज भी तेरी खुशबू ढूंढता हूँ। तेरे हाथ पीले करके तुझे तो विदा कर दिया, तेरे हाथ पीले करके तुझे तो विदा कर दिया, पर दिल का एक हिस्सा तेरे साथ भेज दिया।
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: अब जब भी कोई पकवान बनता है कोई पकवान बनता है तेरी पसंद का हिस्सा अलग निकलता है।
0: वाह जी वाह वाह जी वाह।
1: अब जब भी कोई पकवान बनता है तेरी पसंद का हिस्सा अलग निकलता है। बेटी तू जब भी आती है तो घर में ईद होती है।
0: वाह वाह।
1: बेटी तू जब भी आती है तो घर में ईद होती है। तेरे जाने के बाद हर खुशी थोड़ी उदास होती है।
0: होती है बेशक।
1: मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भी तेरा इंतजार करूंगा। मैं बूढ़ा हो जाऊं तो भी तेरा इंतजार करूंगा। जब तक सांस चलती है तुझसे प्यार करूंगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
1: मैं बूढ़ा हो जाऊं तब भी तेरा इंतजार करूंगा। जब तक सांस चलती है तुझसे प्यार करूंगा। और जिस दिन मेरी आंखें तुझे ढूंढ ना पाएंगी मेरी आवाज तेरा नाम पुकार ना पाएंगी उस दिन भी मेरे घर की चौखट से पूछ लेना। मेरे पापा कहाँ हैं।
0: वाह
1: ये एक बाप का इंतजार है अपनी ब्याही हुई बेटी के लिए।
0: वो तो सिर्फ एक बाप ही जानते हैं।
1: जी हाँ एक बाप जानते
0: हैं। ये भी लफ्ज आपने जितना बोला है ये भी बहुत कम है उस हिसाब।
1: जी हाँ ये कंप्लीट नहीं है।
0: हाँ
1: ये इसमें मैंने जो मिसरे मेरे को अच्छे लगे थे वो मैंने इसमें डाले हैं। मैं बाकी मैंने निकाल दिए।
0: सब कंप्लीट कभी हो भी नहीं सकती।
1: जी हाँ कंप्लीट कभी हो भी नहीं सकता। हाँ
0: सकती, सही बात है।
1: ये जो प्यार होता है वो
0: हाँ।
1: और मैं इसमें अली भाई ये कहना चाहूँगा कि ये नहीं है कि बाप जो होते हैं वो बेटी को ही प्यार करते हैं। वो बेटे से भी प्यार करते हैं
0: बेशक बिल्कुल करते।
1: पर मेरा मानना है कि जो बेटे होते हैं उनका ज़्यादा लगाव जो होता है वो अपनी माँ के साथ होता है।
0: बिल्कुल बात है, आपकी दुरुस्त है। और सिर्फ ये बात नहीं है, दूसरी बात ये भी है कि बेटी जो है वो प्राय घर जाती है।
1: जी जी हाँ जी
0: तो
1: हाँ।
0: फिर जाहिर है आप उसको मिस तो करोगे क्योंकि प्राय घर चली गई है और बेटा जो है वो अपने घर में ही रहता है।
1: महाजी जहाँ
0: तो फिर बेटे की जब दुल्हन आती है वो एक एडिशन होती है
1: जी।
0: लाइफ में एक एडिशन होती है।
1: जी जी जी
0: ये एक एक मतलब अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे लेकिन जब वो बेटा शादी करे तो आपके घर में जो बहू आती है वो एक एक्स्ट्रा आती है आपके घर में जो एक्स्ट्रा आती है।
1: जी जी।
0: लेकिन जब बेटी जाती है तो वो एक सब्ट्रैक्शन होता है
1: जी
0: आपके फैमिली में से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपका एक लाइफ का एक हिस्सा जो है वो चले जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो फिर इस तरह वो जो है वो बाप को फील होता है।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: ऐसा होता नहीं है कि बाप को बेटे का नहीं फील होता, उसका भी फील होता है लेकिन क्योंकि वो पराई है तो चली गई है तो वो फील होता है, माँ को भी फील होता है।
1: जी अच्छा एक बात और होती है कि कई दफ़ा ऐसे होते हैं हालात ऐसे हो जाते हैं फैमिलीज में
0: जी
1: कि मसलन मिसाल के तौर पे हम कह लें कि बेटे को कहीं नौकरी के सिलसिले में या काम के सिलसिले में घर से शहर से बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए या कुछ अपने बिजनेस के सिलसिले में
0: जी।
1: तो वो जब बात करेगा फ़ोन करेगा तो वो माँ को फ़ोन करेगा।
0: हाँ बेशक बेशक बिल्कुल ऐसे ही होते हैं।
1: जी हाँ
0: ऐसे होते हैं।
1: बहुत कम जो बात होती है मेरे साथ भी ऐसे होता है।
0: अच्छा सही ठीक है
1: जी।
0: आपके साथ भी ऐसे ही होता है तो जी आप उसके बारे में थोड़ा बता दें।
1: जी हाँ मेरा बेटा अपनी फैमिली के साथ वो अलग रहता है, हालांकि शहर में ही है
0: जी।
1: वो जब भी फोन करेगा अपनी माँ को फोन करेगा और उससे पूछ लेगा
0: सही है
1: हाँ के
0: हाल चाल कैसे हैं,
1: कैसे हैं
0: जी,
1: पापा कैसे हैं
0: जी जी जी।
1: हाँ तो कई दफ़े ऐसे होते हैं कि वो जब फोन आया होता है बेटे का, अपनी माँ के से बात हो रही होती है
0: जी,
1: उसी से बातें करता रहता है, तो बाप दूर बैठा बैठा होता है और कान उसके उनकी गुफ्तगू में ही होते हैं, तो फिर वो धीरे से वो कह देता है कि उसको बोल दे मैं अभी जिंदा हूँ।
0: माशाल्लाह सही।
1: तो सामिन मेरे सुनने वालों से गुजारिश है, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे हालात हैं कि आपके घर का कोई मेंबर, आपके वालिद या आपका बेटा किसी दूसरे जगह पे गया हुआ है और आपके दिल में कैसे ख्याल हैं, तो हमारे सुनने वाले के साथ ज़रूर साझा करिएगा अपना तजर्बा, हमें अच्छा लगेगा। हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर आप नोट कर दीजिए
0: जी,
1: हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 02381980072
0: जी,
1: और व्हाट्सएप है 07784691440
0: जी।
1: और ये प्रोग्राम आप आवाज़ रेडियो साउथहैम्प्टन से सुन रहे हैं, FM 99.8 से सुन रहे हैं।
0: चलिए साहब, मेरे ख्याल में कि चलते हैं एक नगमे की तरफ।
1: हाँ जरूर जरूर,
0: और फिर मिलते हैं अपने सामिंग के उस बार एक नगमे के दौरान। आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो या मैसेज करना चाहें तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। चलिए साहब ने आपको नंबर दिया है 02381980072, और इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 07784691440। आपके मैसेजेस और आपके कॉल्स का इंतज़ार करते हैं।
2: शाम कहीं सहराओं की और ऊंटों की घंटियों ने मुझे सुर से आशना किया, मैंने उनसे लय सीखी, ये मेरे फन की पहली मंजिल है, इस मंजिल का एक एक गीत मेरी याद का हिस्सा है।

0: वेलकम बैक नाजरीन, आपने खूबसूरत सा नगमा सुना रेशमा जी की आवाज़ में। अली भाई, ये जो गायिका है रेशमा जी
1: जी,
0: ये अपने आप में उनके आवाज़ में बहुत एक सोज है,
1: बेशक
0: एक बेस है ये
1: जी जी।
0: और जो बॉलीवुड फिल्म एक्टर थे धर्मेंद्र
1: जी,
0: हमारे बीच में नहीं है
1: जी जी,
0: वो बॉम्बे से सीधा उनके घर जाते थे, शायद राजस्थान में ये
1: राजस्थान में जी
0: रहती हैं
1: जी, जी।
0: तो वो जब भी उनका दिल करता था उनको फोन करके उनके घर जाते थे और देर देर तक रात तक उनसे गाने सुना करते थे। पूरी फैमिली की, जो दोनों फैमिलियों की
1: जी
0: महफिल जमती थी, वो धर्मेंद्र जी अपनी फैमिली से भी ले जाते थे
1: जी जी,
0: कुछ तो रेशमा जी की फैमिली से भी बैठे होते थे
1: जी जी,
0: तो वो अपने फन का जो जो ऊपर अल्लाह ताला ने दिया
1: जी
0: हुआ
1: जी
0: उनको
1: जी,
0: उसका मज़ा लेते थे। तो शामिन, ये कहने का मकसद यही है कि अगर आपके पास भी कोई शौक है या फन है तो उसको दबाइए मत, उसको बाहर निकालिए
1: जी,
0: और आवाज़ रेडियो साउथहैम्पटन के साथ साझा करिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर आपके पास कोई भी फन है, कोई भी शौक है, तो हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ दिनों के साथ है
1: जी।
0: अली भाई, आप बताइए कि कैसे कैसे है शेर व शायरी नगमा।
1: हमारा एक ख़ास प्रोग्राम है इसके लिए, जिसका हमने वो नाम रखा है आवाज़ कैरियोकी क्लब
0: जी।
1: तो वो हमारे प्रेजेंटर जो है सीमा सरगम, वो इसको इंट्रोड्यूस करती है। तो आप अगर कुछ सुनाना चाहते हैं
0: जी
1: अपनी आवाज़ में, तो रिकॉर्ड करके तो हमें भेज दें, हम सीमा जी को भेज देंगे और वो अपने प्रोग्राम में सेट करके। तो हर इतवार को एवरी संडे 6 से 8 बजे जो है ये प्रोग्राम जो है लाइव होता है, और दुनिया में कितनी जगह से लोग हमें मैसेजेस भेजते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं, तो अपनी आवाज़ से गुनगुनाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम होता है। तो ये होता है संडे को शाम 6 बजे से 8 बजे तक
0: जी। अगर आपको शेर व शायरी का शौक़ है तो
1: भाई, शेर व शायरी का शौक़ हो तो फिर तो आपको इस प्रोग्राम में
0: शामिल होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, हमारे प्रोग्राम की रौनक को और बढ़ाना चाहिए,
1: क्योंकि हमें काफ़ी अरसे से हमें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये साउथहैम्पटन इस बात में काफ़ी मशहूर है कि साउथहैम्पटन में हमारे बहुत से लोग जो है वो शेर व शायरी से दिलचस्पी रखते हैं
0: जी,
1: और उनको फिर इस प्रोग्राम में शामिल बिल्कुल होना चाहिए
0: जी जी
1: जी।
0: तो शामिल प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक मजाया कलाम पेश है, इंतखाब है
1: जी जी,
0: कुछ इस तरह
1: जी।
0: एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम,
1: अच्छा,
0: एक रोज
1: जा रहे थे
0: कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजल हुआ सितम, पैडल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोक हसीना से लड़ गए,
1: ओ माय गॉड,
0: संभली जो वो तो हाथ तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई, कहने लगी कि अंधे हो आता नहीं नजर, कहने लगी कि अंधे हो आता नहीं नजर, ये हरकतें जनाब की ये रीशे मोहतबर, रीशे मोहतबर लंबी जो दाढ़ी रखी हुई है, होली बियर्ड
1: जी
0: उसको, ये हरकतें जनाब की ये रिश्त मोहतबर फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप फिरते हो क्या शरीफों की सूरत बना के आप यू औरतों पे गिरते हो दाढ़ी रखा के आप
1: ठीक है
0: फिरते हो क्या शरीफों की सूरत बना के आप यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप हमने कहा कि थूक दो गुस्से को नाजनीन हमने कहा कि थूक दे तो गुस्से को नाजनीन साइकिल लड़ी है तुमसे दाढ़ी लड़ी नहीं
1: ठीक है
0: साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों टोकती हो दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों हो टोकती दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती
1: जबरदस्त
0: तो ये जनाब एक मजाहिया कलाम था
1: जी
0: अब मेरे सामने कुछ चुनिंदा शेर हैं
1: जी
0: कुछ इस तरह घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है
1: बेशक
0: जो इसकी कदर करता है उसी का वक्त होता है
1: बहुत खूब आई लाइक इट
0: शुक्रिया जनाब जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है जो दर्द है वो ही दवा भी है
1: बहुत खूब
0: शुक्रिया जी
1: बिल्कुल बात सही
0: आज बादलों ने फिर साजिश कर दी आज बादलों ने फिर साजिश कर दी जहां मेरा घर था वहीं बारिश कर दी
1: बाजी वाह
0: अगर फलक को है बिजलियां गिराने की अगर फलक को है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की
1: बाजी वाह
0: इश्क करते हो तो खामोशी से करते जाओ ऐसी नेमत से मेरी जान गिला ठीक नहीं अगला शेर है मुझे छोड़ के खुश है तो शिकायत कैसी अब उसे खुश भी है तो देखूं तो मोहब्बत कैसी
1: बहुत को बिल्कुल साथ सही बात है
0: तो ये एक इफ्तखार आरिफ का शेर है
1: जी।
0: ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में
1: वाह वाह
0: वाह तो सामिन ये कुछ चुनिंदा शेर थे
1: जी।
0: मेरे ख्याल में एक
1: छोटा सा नगमा
0: जी सुनते हैं और नगमे को उस पार फिर मिलते हैं
1: चले ठीक है

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.

0: You're listening to South Hampshire's biggest multi-language community radio station, Hours FM 99.8, making Southampton great.
1: This is Ross and Arlo. We're loving all the tunes in the car. We've just come back from Southampton Hospital, where they fixed Arlo's arm in the hospital there. And we'd like you to play a tune for everyone else recovering with the great teams there. Keep up the amazing tune.
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: दोस्तों, मैं हूँ सीमा सरगम. मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए, जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है. इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं. अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें. नंबर है 07784691440. रिमेम्बर, आवाज कैरियोकी क्लब every sunday 6 to 8 p.m.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Lighthouse International Church की जानिब से
3: हफ्तावार मसीही प्रोग्राम नूरे खुदा
4: हर जुमेरात सुबह 8 से 9 बजे
5: नूरे खुदा
6: हर वीरवार सवेरे 8 तो 9 बजे तक
7: नूरे खुदा
2: आवाज रेडियो 99.8 एफएम पर
5: नूरे खुदा।
8: इस प्रोग्राम में आप सुनते हैं मसीही गीत और गजलें, मसीही शायरी और कलाम मुकद्दस की मीठी मीठी बात।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: I'll take a drive.

0: अब सुनना न भूलिए जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज FM पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं। अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें। नंबर है 07784691440। रिमेम्बर आवाज कैरियोकी क्लब एवरी संडे 6 to 8 PM।
1: पल की लापरवाही।
2: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.
1: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: So, we need a new jingle, Ali. We've got to get in that studio and produce a new jingle.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

0: Merci. Chocolat, merci. Merci.
1: आपकी आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज FM।
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज FM पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी, उर्दू, पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर, और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज, आवाज FM के साथ।
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business, 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year.

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From Woodmill to Woolston, from Netley to Northam, this is Ours FM.

0: अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें मिलूंगा।
1: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
2: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
3: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
4: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
6: Just because you're surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
7: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
8: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
9: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
10: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवरटाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
11: Every Saturday at 5, it's the Winchester Talking Newspaper on Hours FM.

0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pear Tree, this is Our
1: ZFM. एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: This is Natalie DeLuccio and Sunse Rahi hai Awaaz FM.

0: Hop on, rewind, repeat. One wild ride. Retro rickshaw every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.